0: भी नहायत शानदार हैं।
1: टोक्यो में मेजी जिंगू इबादतगाह और सेंसोजी मंदिर मकबूल सियाहती मकामात हैं।
0: और मगरबी जापान का नारा प्रीफेक्चर महात्मा बुद्ध के देवेकन मुजस्मे के हामिल तोदाईजी मंदिर के लिए जाना जाता है। एक और मशहूर मकाम इज़ुमो ताइशा इबादतगाह है, जो देवमालाई सरजमीन कहलाने वाले शिमाने प्रीफेक्चर में है। मकबूल सियाहती मकामात पर इंतहाई भीड़ होती है, इसलिए अलसुबह दरवाजे खुलते ही दाखिल होना बेहतर होगा। और चूंकि दरवाजे खुलने से ऐन कबल फर्श वगैरह की सफाई भी हुई होती है, इसलिए माहौल भी साफ सुथरा होता है, यानी वो वक्त ज़्यादा पुरसकून होता है।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 21 मई बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान सरकार पश्चिम एशिया के हालातों के कारण ऊर्जा की बढ़ती लागत से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए $3 अरब से अधिक खर्च करने पर विचार कर रही है। सरकार और सत्ताधारी गठबंधन पार्टियां गैस और बिजली के बिलों को पिछली गर्मियों की तुलना में कम रखना चाहती हैं। सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई और सितंबर में प्रति किलोवाट घंटा 2 येन और अगस्त में 2.4 येन की बिजली सब्सिडी प्रदान की थी। सरकार इस वर्ष गर्मियों में उससे 1 या 2 येन अधिक सब्सिडी देने की योजना बना रही है। इन उपायों के लिए लगभग 500 अरब येन यानी $3 अरब से अधिक की राशि आवंटित करने की योजना पर जल्द से जल्द अगले सप्ताह तक निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। ये धनराशि इस वित्त वर्ष के बजट में शामिल आरक्षित निधि से ली जाएगी। योजना के व्यापक स्वरूप को देखते हुए इस वर्ष का पूरक बजट तैयार करने की संभावना पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। जापान में अप्रैल में पश्चिम एशिया से कच्चे तेल के आयात की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2/3 लुढ़की। ऐसा होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रभावी रूप से बंद होने के कारण हुआ। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे तेल का आयात 67.2% गिरकर लगभग 38 लाख किलोलीटर रहा। नेफ्था सहित अन्य उत्पादों वाली तेल श्रेणी के आयात में 79.4% की भारी गिरावट देखी गई, जबकि तरलीकृत प्राकृतिक गैस में 76.1% की कमी आई। इसकी भरपाई के लिए जापान ने अन्य देशों व क्षेत्रों से तेल उत्पादों की खरीद का प्रयास किया। अमेरिका से कच्चे तेल का आयात 38.8% और नेफ्था का आयात तेजी से कई गुना बढ़ा। अप्रैल में जापान के व्यापार संतुलन के बारे में मंत्रालय की रिपोर्ट में तेल आयात के आंकड़ों को शामिल किया गया। जापान ने अप्रैल में कुल मिलाकर लगभग 302 अरब येन यानी लगभग 1.9 अरब डॉलर का अधिशेष दर्ज किया। सेमीकंडक्टर संबंधी उत्पादों की मांग बढ़ने के कारण निर्यात मूल्य 14.8% बढ़ा, जबकि आयात में 9.7% की वृद्धि हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे अमेरिकी हथियारों की संभावित बिक्री के बारे में ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते के साथ बातचीत करने के इच्छुक हैं। ट्रंप ने बुधवार को वॉशिंगटन डीसी के निकट जॉइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि हथियारों की बिक्री के बारे में फैसला लेने से पहले क्या वे लाई से बात करेंगे, इस पर ट्रंप ने कहा, मैं उनसे बात करूंगा, मैं सबसे बात करता हूं। इस मामले से निपटने के बारे में ट्रंप ने कहा, हमने स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। ट्रंप ने इसके बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पिछले सप्ताह हुई शिखर बैठक को एक शानदार बैठक बताया। ट्रंप ने कहा, हम ताइवान समस्या पर काम करेंगे। पिछले सप्ताह शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने ताइवान को हथियारों की संभावित बिक्री के बारे में टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें ताइवान की बागडोर संभाल रहे व्यक्ति से बात करनी होगी। इसके जवाब में लाई ने भी बुधवार को बातचीत की तत्परता व्यक्त की। इससे पहले ट्रंप ने ताइवान को हथियारों की संभावित बिक्री को तुरुप का पत्ता बताया था।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय सामरिक मेलजोल बढ़ाने का संकल्प लेते हुए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। उन्होंने ईरान पर अमरीकी इजरायली सैन्य हमलों की आलोचना की और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देते हुए अपनी एकजुटता पर बल दिया। दोनों नेताओं ने बुधवार को पेचिंग स्थित ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में बातचीत कर संयुक्त वक्तव्य जारी किया। वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि ईरान पर अमरीका और इसराइल के सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इसमें विवादित पक्षों के बीच संवाद और बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वक्तव्य में कहा गया है कि जापान अपने पुनर्सैन्यकरण में तेजी लाते हुए क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। इसमें चीन और रूस ने मांग की है कि जापान अपने नए सैन्यवाद और पुनर्सैन्यकरण को रोके। इसमें दोनों पक्षों ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने का संकल्प भी लिया है। चीन सरकार का कहना है कि चीन और अमेरिका के बीच जारी शुल्क कटौती वार्ता के दायरे में दोनों पक्षों के 30 अरब डॉलर मूल्य के सामान आ सकते हैं। चीन ने दोनों देशों द्वारा लागू किए गए निर्यात नियंत्रणों पर विराम लगाने की नवंबर की समय सीमा को बढ़ाने के लिए बातचीत जारी रखने की तत्परता भी व्यक्त की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने पिछले सप्ताह शुल्क कम करने पर चर्चा करने के लिए एक व्यापार परिषद के गठन पर सहमति व्यक्त की थी। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि शुल्कों में कटौती हेतु एक रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति बनी है, जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों का कम से कम 30 अरब डॉलर का सामान आएगा। मंत्रालय ने चीन और अमेरिका द्वारा लगाए गए निर्यात नियंत्रणों पर रोक को आगे बढ़ाने की इच्छा भी व्यक्त की। उसने कहा कि ऐसा करने से दोनों देशों के हितों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षाओं की पूर्ति होगी। लेकिन मंत्रालय ने कहा कि चीन अमेरिका के साथ वाजिब चिंताओं पर चर्चा जारी रखते हुए कानून और नियमों के अनुसार दुर्लभ धातुओं पर निर्यात नियंत्रण जारी रखेगा। इससे संकेत मिलता है कि चीन इन प्रतिबंधों को बनाए रख सकता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि चीन 200 बोइंग विमान खरीदेगा। यह खुलासा शिखर बैठक में हुए समझौतों के बारे में व्हाइट हाउस द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप है।
1: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान सरकार पश्चिम एशिया के हालातों के कारण ऊर्जा की बढ़ती लागत से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए 3 अरब डॉलर से अधिक खर्च करने पर विचार कर रही है। सरकार और सत्ताधारी गठबंधन पार्टियां गैस और बिजली के बिलों को पिछली गर्मियों की तुलना में कम रखना चाहती हैं। सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई और सितंबर में प्रति किलोवाट घंटा 2 येन और अगस्त में 2.4 येन की बिजली सब्सिडी प्रदान की थी। सरकार इस वर्ष गर्मियों में उससे 1 या 2 येन अधिक सब्सिडी देने की योजना बना रही है। इन उपायों के लिए लगभग 500 अरब येन यानी 3 अरब डॉलर से अधिक की राशि आवंटित करने की योजना पर जल्द से जल्द अगले सप्ताह तक निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। ये धनराशि इस वित्त वर्ष के बजट में शामिल आरक्षित निधि से ली जाएगी। योजना के व्यापक स्वरूप को देखते हुए इस वर्ष का पूरक बजट तैयार करने की संभावना पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।
0: इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।